नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया, बिन जिहवा कहां को बगता, बिन श्रवना कहां को सुनता।

साहिब गुरु नानक देव जी बचन करते हैं, ध्यान देना बाणी पातशाह आखदे।

गया। बहुत धनाढ्य आचारवंत शोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत भाइया साजन संग परीत।

दे मंगा सासा गुणा सोकरे संसार चोरा यारा दुकरारा खराब बेकार एक उन्दा खाए तले थाउ दना बेकाए कार जल थल जिया पूरिया लो आया कार ओए जाके सो तू

कैसे तुम सम सत में अच्छे साथ रहे। सब कुछ सत्समावेर कह रहे प्रभु राम नाम देवा मैसूर। नाय नाय प्राच जाए नान तो मुखंतर पाए। जिनमें जो छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम फया पाजा गोपी ले बिंद्रावन में रंग किया।

0: You're listening to Signet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.
1: और सत्संग जीओ ए राग सुगड़ई है जो आप जी ने सुनाण लगे हैं। इस विच गुरु पातशाह कारण करते जो किया सोई है करना, जे सो तावे प्राणिया पावे तुर लेना, जो तेरे मस्तक ते लिखिया है। बिन कर्मा किछु न लबे जे फिरे सब तरना, गुरमिल पाओ गोबिंद का पै डर दूर करना। ए भी बड़ी पुरातन रीत है जो आप जिनो आप सब सुन वाले बैठे हो, ता ही दिल करदा जो दो दो चीजा हन आप दी सेवा विच

पति नूं किवें दिखाया, किवें खुश कीता, मैनूं ओ गुण दस। मानो मनुख किसे भगत तों पुछ रिहा, गुरु कोलों पुछ रिहा, दाता तूं रब नूं किवें रिझाया। सवाल करदे ने फिर अगों जवाब आउंदा, मैं की गुण धारण कीते। पातशाह आखदे ने

कबूद करते लोग हटाए ठाड़ भयो मैं जोर कर वाह वाह गोविंद सिंह ठाड़ो।

परमेश्वर पुत्र है ते सब नरक कुंड में पर है। मोको दास तब उनका जानो वाह वाह गोविंद सिंह।

इस ताल का नाम ध्रुपद है, राग का नाम तो तुम सुन ही चुके हो। साहब गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी गरीब निवास जी का उचारिया होया पवित्र शब्द है। राग बिहागड़ा दी वार दे विच्चों ए शब्द है। श्लोक मल्ला चौथा, बिन सतगुर सेवे जी के बंधना जेते कर्म कमाहे, बिन सतगुर सेवे ठवर ना पावे मर जम्मे आवे जाहे, बिन सतगुर सेवे फिक्का बोलना नाम ना वसै मन आए, नानक बिन सतगुर सेवे जमपुर बद्धे मारिए मोह काले उठ जाए। चार पंक्तियां दा ए शब्द है। आप जी ने अस्थाई ध्रुपद दी सुनी है, अंतरा हुण लगा के फिर इसे शब्द नूं द्रुत चाल विच तीन ताल विच पढ़ांगे, एन टाइम दे उत्ते समाप्ति करनी है। प्यारी साध संगत, मैं आप संगत जी वल्लों श्रोमणी कमेटी के प्रबंधकों नूं लख लख वधाई देना, जिन्हां ने अज दा ए समागम गुरमत कीर्तन दरबार रागां दे विच राग दरबार जिसनूं कहिंदे आ ओह करवाया है और बड़ा ही उद्यम किया है। यह बड़ा शुभ कर्म है जो इन्होंने प्रबंधक ने किया। बहुत ही साड़ी आशा दे उत्ते इन्होंने सही साड़ी आशा पूरी की है। आशा नूं चंद लाए ने, गुरु कृपा करे इसे तरह ही इस तरह के प्रोग्राम करवाते रहन, बड़ी खुशी हुई है। सो आप जी हुण अगलियां पंक्तियां दा कीर्तन अंतरा श्रवण करो। बिन सतगुर सेवै ठवर ना पावे, बिन

सतगुरु सेवे बिन सतगुरु बिन सतगुरु से बिन सतगुरु सेवे बिन सतगुरु सेवे फिक्का बोलना बिन सतगुरु से बिन सतगुरु सेवे नाम नाम जय मान।

बादशाह आप कृपा की है और असी अपने गुरु अगे बेनती करनी है महाराज धन गुरु रामदास पातशाह धन गुरु नानक साहब गुरु ग्रंथ साहब महाराज कृपा करो जिस कम ये जो आप जी ने कृपा बख्शिश की है कृपा करो मेरा दे घर विच आओ साडे ते अपनी दृष्टि करो और बख्शा करो जिवें कबीर साहब कह रहे हैं आप भी सारे कहो जेड़े जेड़े कह सको।

ऐसा हर सेविए नित ध्याइए। साहिब गुरु रामदास साहिब जी फरमान कर दे, ऐसा हर सेविए नित ध्याइए, जो खिन में किल बिक सब करे विनाशा, जे हर त्याग अवर की आस कीजे, ता हर ने फल सब घाल गवास, मेरे मन हर ऊपर कीजे भरवासा, जे जाइए ते नाल मेरा स्वामी, हर अपनी पैज रखे जनदासा, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पे, ता आगे अपनी बिरथा बहुत कढ़ासा, अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा।

सिकंदर को हर समान नहीं राजा ए तू पद सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा तेरो जन होए सो एकत डोले तीन भवन पर छा जा हाथ पस

मेरी चिंता मिट गई है और मां ना मैनू डर आउंदा है ते ना मेरे अंदर कोई चिंता आउंदी, इस लई कि तू मेरा सारियां थावां ते राखी करना, सारियां थावां ते तू मेरा राखा है, जे तू मेरे नाल है ते मैनू डर किसदा, मैनू डर किसदा, जे तू मेरे नाल है तो मैनू अग की करूगी, जे तू मेरे नाल है तो मैनू कोई विपता संसार की सता नहीं सकती और मेरा कोई नुकसान और डरा धमका नहीं सकती, क्योंकि तू मेरा राखा है सारिया थावां ते। इसे लिए मालक सतगुर सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, हजूर ने बड़े माण विच बड़े जोर विच कहा कि एडा मेरा वाहिगुरु वड्डा है कि भावे मैं अग विच भावे मैं देग विच भावे तत्तियां रेतां सीस ते पईयां पर मैनू तत्ती वाह भी नहीं लगी। एक कौन कहेगा? खसम वाला, मालक वाला, गुरु वाला, जिहड़ा है ही बेगुरा, वह कहेगा कि जिसनू कदी पिता दी गोद विच बैठन दा सुभाग समा ही नहीं प्राप्त होया, वो मान की कर सकता किसे ते। जिसने कदी पिता कोलो अमृत ही नहीं पीता, वो कह सकता है कि मेरा बापू मेरा पिता मेरे वास्ते आ करेगा? नहीं, नहीं कह सकेगा, उन्हू अपनी कमजोरी दा पता है। लेकिन सतगुर सच्चा पातशाह बड़े तान नाल बड़े मान नाल हजूर फरमांदे ने, ताती वाओ न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एकै लिव लाई, राख लिए तिन रखनहार सा ब्याद मिटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पए। उस मान विच आके तान विच आके असी कौन हां? सारे बच्चे सारा परिवार सतगुरु जी दा, बच्चे और बच्चियां परिवार मालिक सतगुरु, सतगुरु परिवार दा मालिक है साडा। तो असा ए तो कदी नहीं कहना कि असी सतगुरु दा परिवार हां, पर आपा पढ़ लईए जरूर, सारी संगत पढ़ियो, गुरु अर्जन देव अकाल पुरख की गोद विच ते सारी संगत गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे चरणा उते, फोटो ते इवें आएगी ना, पता ते इवें लगेगा ना, अकाल पुरख की गोद विच अकाल पुरख दे चरणा उते साहिब गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह और उन्हां दे चरणा उते आपां सारे। उस मान विच आके सतगुर सच्चे पातशाह हजूरी विच जिवें उन्हां ने माण कीता, आपां वी माण करिए ने सारे। तो बोलियो सारे, बीबियां उच्ची आवाज विच और वधे कंट्रोल विच, गलबात छोटी छोटी साडे को नहीं आउणी चाहीदी, क्योंकि सत्संग है, सचखंड है, वैकुंठ है, इसी महिमा दा पारावार नहीं, जे असीं नहीं सोचांगे तो बेअदब होवांगे। सारे पढ़ियो।

satsang. ये शब्द भक्त रविदास जी का उच्चारण किया होया है। इस दे विच भक्त रविदास जी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रेज कर रहे हैं कि ओ प्राणा दा नाथ सानू प्राण जीवन जिंदगी देन वाला प्राणा दा नाथ परमात्मा वाहिगुरु मिलत प्यारो प्राण नाथ ओ प्यारा प्राणा दा नाथ वाहिगुरु मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत दे किस भक्ति दे द्वारा ओ प्यारा वाहिगुरु मिलता है। ये सवाल उठाया है किस भक्ति दे द्वारा यानी किस मेथड दे द्वारा किस टेक्निक दे द्वारा किस विधि दे द्वारा किस युक्ति दे द्वारा उसनु मिलन दा रंग राह अते ढंग की है। यह सवाल मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत ते

मैं ते परम गति सब तो उच्ची अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु नु मिलन दी जो है वो पाई है किस तरह साध संगत दे द्वारा। सो साध संगत ही वो टंग है, साध संगत ही वो विधि है, साध संगत ही वो रस्ता है जिस दे द्वारा प्राणा दा नाथ प्यारा वाहिगुरु मिलता है। अगलियां पंक्तियां दे विच भगत गुरदास जी ये दसणगे कि साध संगत उन्होंने किवें कीती।

बहुत कमाल की गल बाबा जी बाणी चाहते हैं कि जो साधुओं का संग है वह सिर्फ इत्थे ही काम नहीं आता, किसी होर दुनिया च भी काम आता। बाणी का प्रमाण सुनो, कहते हैं

साधु मित्र हन जिन्होंने ढूंढ सज्जन संत पक्या जिन्होंने पक्के हुए आत्मक जीवन दे विच प्रपक्ष साधुओं दे नाल अपनी मित्रता पाई है कहिंदे हन ए जिहड़े कच्चे हन इन्होंने ते इत्थे ही छड़ जाना है कहिंदे हन तुहाडी रूह नूं ओह खुआर नहीं होण दिंदे तुहाडी रूह नूं पटकण नहीं दिंदे साधु संत दोनों जहाना दे विच तुहाडी जो है वह संभाल करते हैं इस करके साध संगत नालों वड़ा होर कोई टंग ही नहीं है भक्ति का इस करके होर सारिया विधियां जड़िया हैं वह साध संगत के मुकाबले दे विच कुछ नहीं हैं प्रेम नाल गाओ।

बहुत प्यारे वचन हैं। ये शब्द इतना इतनी परफॉर्मनेस के नाल भरिया पिया है कि असी इसनू अपनी जिंदगी अगर कमा लईए, इसनू वरत लईए, तो साडा जीवन भगत रविदास जी की तरह बदल सकता है। भगत रविदास जी कहते हैं, फिर मैं की कीता, जोई जोई जोरियो सोई सोई फट। जो भी अपने अंदर सुभाव जोड़े हुए सन, सुभाव पकाए हुए सन, इन्वेस्टेड हैबिट्स सन, कहिंदे उसनू मैं सारे नू एक कचरा समझ के पाड़ दिता। जोई जोई जो रहे हो, असी कई दफा एक दफा किसी नाल नाराज हुंदे हां, फिर उसनू असी अपने अंदर जोड़ लेने हां, उस नाराजगी नू फिर सारी उम्र रखते हैं। किसी ने अगर सानू कोई बुरा शब्द किसी वेले कह दिता है, वह फिर सानू सारी जिंदगी याद रहिंदा है। जदों भी उस परसन नू असी देखते हां, उस रेफरेंस दे विचों देखते हैं, उसे रेफरेंस दे विचों देखते हैं। मेरे नाल किसी ने बुरा किया है, उसनू असी भुला नहीं सकते। कहिंदे जोई जोई जो रहे हो, अगर 10 साल पहला किसी इंसान ने कोई गलत काम किया है, वह सुधर भी जाए, तो साड़ियां निगाहां दे विच जदों असी उसनू मिलांगे देखांगे, तो असी यह कहांगे सानू पता है 10 साल पहला किदां दा हुंदा सी। दिस इज अवर नॉर्मल बिहेवियर। 10-15 साल पहला अगर किसी इंसान का जीवन किसी होर किस्म का सी, जो कि बहुत एक्सेप्टेबल नहीं सी, लेकिन वो इंसान अपना जीवन बदल लेता है। उसने तो जीवन बदल लिया है, लेकिन लोगों ने ओपीनियन नहीं बदली अपनी। लोग उसनू यही कहते हैं कि जानते हैं असं इसनू 10 साल पहला की करता हूं, उसनू क्रेडिट दो, उसनू शाबाश दो कि इसने अपना जीवन 10 साल के कितने का कितने ले आता है, बदल लिया है, ना कि तुसी उसे नू ही देखना है। बाणी दे विच एक साड़ी जो अवस्था है, साड़ी जो आदत है, उसके प्रति बहुत खूबसूरत लाइन महाराज ने दर्ज की है। कहते हैं, माखी चंदन पर हरे जह बिगंध तह जाए, माखी चंदन पर हरे जह बिगंध तह जाए। जड़ी मक्खी है वो चंदन ते नहीं बैठती, उनू त्याग देती है। जह बिगंध जिथे गंदगी है उथे जाके बैठती, उथे जाके बैठती। तो असी भी अपने जीवन दे विच किसी की खूबसूरती नू, किसी दे शुभ गुण नू जदों देखते हां, ते नाल दी नाल कोई उहदा कोई ना कोई अवगुण जां कोई उसका पिछला कर्म जरूर देखने की कोशिश करते हैं। भगत जी कहते हैं, मेरिया निगाहां च मैं अपने अंदरों जो भी जोड़िया सी, कहते सब पाड़ के रख दिता। अगर किसी नाल नहीं सी बनती तो उसनू जाके आप बुला ले। कोई अगर मैनू मैला लगता सी तो उसनू आख्या गले लगा के, भाई तू ही मैला नहीं, मैं तेतों भी खुद ज्यादा मैला। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटो। जेड़े गलत सुभा पक चुके सन, आलस का सुभा गलत है, निंदा का सुभा गलत है, चुगली का सुभा गलत है, होमे का सुभा गलत है, उच्चा बोलन का सुभा गलत है, कौड़ा बोलन का सुभा गलत है, ये सारे पक्के हुए सन। कहते वो सारे दे सारे मैं, दिस वॉज द सैकेंड इफेक्ट ऑफ द साध संगत। कहते मैं ये सारे दे सारे फौरन पाड़ सके, डिले नहीं की थी। जोई जोई जो रहे हो सोई सोई फाट्यो, झूठे बंज उठ ही गई हाट्यो। वह कहते जी झूठ की दुकान खोली उसी मैं, उठ ही गई है, खत्म ही हो गई। अखीरली लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही अर्थपूर्ण है, जिस दे विच भगत रविदास जी आखते हैं। पहला उसनों सुनो, फिर उसका असी अर्थ करांगे।

अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा, सो ऐसा

कै मन लाजुम रस अवरा पै कै मन लाजुम रस। महाराज सतगुरु जी वचन कर रहे ने पाई जो मन दी बिरथा है ये वाहगुरु अगे आख किसी मनुख कोल ना को ये बंदा मन दी बिरथा मन दी गल लोकां पास करदा है मन लोकां पास फरोलदा है। महाराज कहते नहीं जे लोकां कोल गल करेगा अपना दुख दसेगा वो तेनू भी दुख होर सुना दूंगा। बंदे कोल मन ना फरोल वाहगुरु पास फरोल। मन दी गल गोज गल जी की कीजे सतगुर पास। जो मन दी गल है ऐ मनुख जो तू किसे कोल नहीं कह सकदा तो गुरु कोल कह दे वाहगुरु कोल कह दे। गोज गल जी की कीजे सतगुर पास ता सर्व सुख पाई। मन दी गल कोई वरी है कोई दुख है गुरु नू आख। महाराज वचन कर दिए ने जे अपनी बिरथा कहो अवरा पै ता आगे अपनी बिरथा बहु बहुत कड़ास। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पै जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। वो वाहगुरु अगे बेनती कर जेड़ा एक छिन विच वो दुखां नूं दूर करन दी समर्था रखदा है। महाराज इस वचन विच